0: of Malacopic Hospital behind me.
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: जय बजरंग ट्रेनिंग नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धारिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिल को बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ। विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाज द्वारा संचालित 24 घंटा आकस्मिक सेवा सहित को एम्बुलेन्स सेवा चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ मोबाइल नंबर 9860574222 9818140153।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: गर्दछौ। बेनीघाट रोरङ 5 बेनीघाट धादिङ प्रिन्सिपल डीपी सापकोटा सम्पर्क नम्बर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एन्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 7 बज्यो।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: शुभकामना स्टोर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ। सम्पर्क नम्बर 9863 69 13 50।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333883।

लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरुमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38 यहाँ नया साइकिल सुखद मूल्य में बिक्री।

प्रिन्सु इन्टरप्राइजेस, नीलकण्ठ नगरपालिका 3, शान्त बजार, धादिङ। प्रोप्राइटर गकुल नेउपाने। सम्पर्क नम्बर 9841038739। हामी कहाँ पीपीआर, पीवीसी पाइप लगायत हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ।

विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: रमेश टेलरिंग एन्ड सटिङ सुटिङ सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी धादिङ। हामी कहाँ अर्डर अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी कपडाहरूको कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल तथा लेडिज जेन्ट्सका आधुनिक डिजाइन अनुसारका पोसाकहरू तयार गरिन्छन्। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: रेविका सुनसादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 सुकमटोल धादिङ। हामी कहाँ तपाईले रोजेको खोजेको जस्तो आकर्षक आधुनिक डिजाइनमा गरगहनाहरू बनाइनुका साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9869211377 9818320632।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: रिजाल आयुष कपड़ा पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार मिलन टोल धादिङ। प्रोपाइटर दामोदर रिजाल। सम्पर्क फोन नम्बर 0105204161 मोबाइल नम्बर 9841464455। हामी कहाँ आधुनिक तथा लेटेस्ट मोडल का स्वदेशी विदेशी फ्रानको कपड़ाहरू पाइनुको साथै खुद्रा एवं होलसेल मूल्यमा बिक्री वितरण पनि गरिन्छ र स्कूल कलेज का ड्रेस तथा सटिङ शूटिंग का साथ ही आवश्यकता अनुसार सिलाई को पनि व्यवस्था रहेको छ।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: समर सुनसादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ। प्रोपाइटर रामकृष्ण अमात्य। सम्पर्क नम्बर 9860707666।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससहा धादिङ प्रोप्राइटर काजीमान श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9847-3267 9813-3539। हामी कहाँ विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक ब्लकहरू पिल्लर टायल सेलेप लगायत ब्लक सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै ढुवानीको पनि व्यवस्था छ।

0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: विजया दशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: जय बजरंग ट्रेनिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 12 देवीथान धादिङ सम्पर्क नम्बर 9856038538। हामी कहाँ गुणस्तरीय रड पीपीसी ओपीसी सिमेन्ट पाइप साता तथा रंगीन जस्ता पाताहरू एंगल पत्ती रकवायर पत्ती राउन्ड पाइप च्यानल पत्ती स्टील पाइप ग्रिलको बुट्टा एचआर सिट सीआर सिट आदि पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्स को जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: डायमंड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादीहरू पनि पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परीक्षण तथा कुखुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841689466 9551060463।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: रमेश टेलरिंग एन्ड सटिङ सुटिङ सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी धादिङ। हामी कहाँ अर्डर अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी कपडाहरूको कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल तथा लेडिज जेन्ट्सका आधुनिक डिजाइन अनुसारका पोसाकहरू तयार गरिन्छन्।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: विजयादशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: शुभकामना स्टोर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ। सम्पर्क नम्बर 9863 69 13 50।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भा संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करद
1: सक्सेस अपस्टल स्कूल नीलकंठ नगरपालिका 4 रायटार धादिंग प्रिंसिपल तुल बहादुर गुरुंग संपर्क नंबर 9851333883।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एन्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: डायमन्ड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादी पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परिषद कुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841649566 9551160463।

बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुखद मूल्य में बिक्री करिनुका साथै

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत संपूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: प्रिन्सु इन्टरप्राइजेस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर गकुल नेउपाने सम्पर्क नम्बर 9841038739। हामी कहाँ पीपीआर पीवीसी पाइप लगायत हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससहा धादिङ प्रोप्राइटर काजीमान श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9847326775 9813335। हामी कहाँ विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक ब्लकहरू पिल्लर टायल सेलेप लगायत ब्लक सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै ढुवानीको पनि व्यवस्था छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: होटल नमुना एन्ड लज प्रोपाइटर बुद्धिलाल श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9861970040। हामी कहाँ स्वादिष्ट खाना तथा नास्ताका साथै मिनी बसको टिकट र रिजर्भको समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: न्यू डिजाइनर टेलरिंग एन्ड सटिङ सुटिङ सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोपाइटर राहुल परियार, सम्पर्क नम्बर 9845334455 9141065490।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: विजय दशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 9843252638। यहाँ नयाँ साइकल सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगाय देश तथा विदेश में रहन् भाई दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: करदनस्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोपाइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन् साथै एसियन पेन्ट्स को जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: डायमंड भेटनरी सेंटर नीलकंठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन हामी कहाँ विभिन्न किसिम का स्वदेशी तथा विदेशी औषधी भैक्सिन तथा उन्नत जात का बीउहरू लगायत विषादी पाइन्छ। यहाँ निःशुल्क गोबर परीक्षण तथा कुखुरा को पोस्टमार्टम गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841689566 9551060463।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 43 25 36 38। यहाँ नयाँ साइकल सुखद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ। के तपाईँ यो दशैंमा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? मोबाइल किन्दा इयरपोड्स फ्री,
0: चार्जर, स्पिकर, ग्लास कभर, इयरफोन्स लगायतको सामानमा 50% डिस्काउन्ट।
1: हजार भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा गेम खेली 50% डिस्काउन्ट पाउनुहोस्। 5 बोतलमा गेम खेली 1000 सम्म जितौं।
2: इन्द्र मोबाइल पसल दार्जिलिङ बेसी पुसर बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 49 24 31 11 98 49 24 31 11।
1: सुन्नुहोस् त, टिकटकमा फलो गरेर आउनेलाई 10% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट छ है। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: रेविका सुनसादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 सुकमटोल धादिङ। हामी कहाँ तपाईले रोजेको खोजेको जस्तो आकर्षक आधुनिक डिजाइनमा गरगहनाहरू बनाइनुका साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। सम्पर्क नम्बर 98 69 21 31 77 98 18 320 632।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
3: रिजाल आयुष कपड़ा पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार मिलन टोल धादिङ प्रोप्राइटर दामोदर रिजाल। सम्पर्क फोन नम्बर 0-10-520-461 मोबाइल नम्बर 98-41-64-54-55। हामी कहाँ आधुनिक तथा लेटेस्ट मोडल का स्वदेशी विदेशी थानको कपड़ाहरू पाइनुको साथै खुद्रा एवं होलसेल मूल्यमा बिक्री वितरण पनि गरिन्छ र स्कूल कलेज का ड्रेस तथा सटिङ का साथ ही आवश्यकता अनुसार सिलाई को पनि व्यवस्था रहेको छ।
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: समर सुनसादी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ प्रोप्राइटर रामकृष्ण अमात्य। सम्पर्क नम्बर 98 60 707 606।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: विजया दशमी 2081 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभावहरू लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: सक्सेस अपोस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851 33 73 83।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यूनिभर्सल इलेक्ट्रोनिक्स नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिङ, यहाँ विभिन्न ब्रान्ड का मोबाइल टीवी फ्रिज वाशिंग मेसिन लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिक सामानहरू ग्यारेन्टी का साथ होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। साथै मोबाइल टीवी फ्रिज लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841521840 9841061000।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक ज्यूहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भा नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त
1: गर्दछौ। बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भा संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: डायमंड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादीहरू पनि पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परीक्षण तथा कुखुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841689566 9551060463। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भा संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: दाजुभाई सुन चाँदी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 एमाले चोक धादिङ सम्पर्क नम्बर 9866259906021। हामी कहाँ तपाईँले रोजेको खोजेको जस्तो आकर्षक आधुनिक डिजाइनका गरगहनाहरू बनाइनेको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि साटिन्छ। हाम्रो शाखा नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजारमा पनि रहेको छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: धादिङ डेरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 पुछा बजार धादिङ हामी कहाँ पनिर प्रति किलो मात्र ₹700 पाइन्छ। सम्पर्क फोन नम्बर 0105211122 मोबाइल नम्बर 9851099671। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भा संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हाम्रो फुटवेयर कलेक्शन प्रोप्राइटर विनय सराफ मोबाइल नम्बर 9812225553। हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्ड का जुत्ता चप्पल पाइनुका साथै कलेज स्कूल को जुत्ता चप्पलहरू होलसेल तथा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहर शिक्षित तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भा नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करद।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भा संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन्भएका संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: सक्सेस अपस्टल स्कूल नीलकण्ठ नगरपालिका 4 रायटार धादिङ प्रिन्सिपल तुल बहादुर गुरुङ सम्पर्क नम्बर 9851333883।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: यूनिभर्सल इलेक्ट्रोनिक्स नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिङ, यहाँ विभिन्न ब्रान्ड का मोबाइल टीवी फ्रिज वाशिंग मेसिन लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिक सामानहरू ग्यारेन्टी का साथ होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। साथै मोबाइल टीवी फ्रिज लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841521840 9841067100।
2: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: न्यू नमस्ते टेंट एंड कैटरिंग सर्विस प्रोपाइटर राजेन्द्र रिजाल मोबाइल नंबर 9847-69-86-96 9866-25-1991। हामी कहाँ ट्रेन देखि लिएर क्याटरिङ सम्मको सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध हुनुका साथै मेलाको स्टल स्टेज कम्पाउण्डको काम पनि गरिन्छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत 1147 तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन्भएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: श्री मिलन श्रेष्ठ स्मृति समाजद्वारा सञ्चालित 24 घण्टा आकस्मिक सेवा सहितको एम्बुलेन्स सेवा, चालक अमृत कुमार श्रेष्ठ, मोबाइल नम्बर 9860574422, 9818140153।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: अनुग्रह सुनचारी पसल नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बीच बजार धादिङ, प्रोप्राइटर सुरेश सुनार, सम्पर्क नम्बर 9745533568, 9819188116।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहनी लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानव भावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउंटेन बाइक नीलकंठ नगरपालिका 3 शांत बजार धादिंग संपर्क नंबर 98 43 25 36 38। यहाँ नया साइकिल सुपथ मूल्य में बिक्री साथ ही पुरानो साइकिल मरमत

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हमारा संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक जीवहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहनी सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना करते हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको संपूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदी बहनी लगायत संपूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बीके मार्बल एण्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ससाहा धादिङ प्रोप्राइटर काजीमान श्रेष्ठ मोबाइल नम्बर 9847326775 9813335309। हामी कहाँ विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलक ब्लकहरू पिल्लर टाइल सेलेप लगायत ब्लक सम्बन्धी सबै काम गरिनुका साथै ढुवानीको पनि व्यवस्था छ।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: वज्र माउन्टेन बाइक नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 9843256338। यहाँ नयाँ साइकल सुखद मूल्यमा बिक्री गरिनुका साथै पुरानो साइकल पनि मर्मत गरिन्छ।
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला रातको 10 बज्यो।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाई बहनी अभिभावक ज्यूहरू शिक्षक तथा कर्मचारी साथी शुभेच्छुक महानुभाव लगायत देश तथा विदेश में रहन् भएका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु आर्थिक उन्नयन को कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बेनी शिक्षा सदन स्कूल बेनीघाट रोरांग 5 बेनीघाट धादिंग प्रिंसिपल डीपी सापकोटा संपर्क नंबर 9841032042।
0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक मानवभावहरूमा सुख शांति सुस्वास्थ्य दीर्घायु समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: बीके मार्बल एन्ड सेनेटरी हाउस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर विष्णु प्रसाद राजवंशी हामी कहाँ हाई क्वालिटी मार्बल ग्रेनाइट टाइल सबै प्रकारका सेनेटरीज उपलब्ध छन्। साथै एसियन पेन्ट्सको जिल्लाकै उत्कृष्ट डिलर हाम्रो पसल धादिङ बेसी र गजुरीमा पनि उपलब्ध छ। विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2083 को पावन अवसर में देश तथा विदेश में रहन् भएको सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: डायमंड भेटनरी सेन्टर नीलकण्ठ नगरपालिका 3 शीतल बजार धादिन हामी कहाँ विभिन्न किसिमका स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू भ्याक्सिन तथा उन्नत जातका बिउहरू लगायत विषादीहरू पनि पाइन्छ। यहाँ निशुल्क गोबर परिचय तथा कुखुराको पोस्टमार्टम पनि गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 9841689566 98511463।